मै रहोस्, मेरो देश धरती रहोस्, मर्न परे मै मरौ, मेरो देश बाँचिरहोस्, मेरो देश बाँचिरहोस्।

एलजीले ल्यायो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज, अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई। नागरिकता भए पुग्छ हरेक घरको खुसी, घर घरमा एलजी। एलजी लाइफ्स गुड।

0: Radio Simon 89.8 megahertz.
1: साहिनो समय सूचक अहिले साँझको 5 बज्यो 8:05 PM